दर दर्ज की है। नमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल

2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि

से दिल्ली से बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियानो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम वंदनवार आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं न वह चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। भगवान व्यक्ति तो वर्तमान काल

मंदिर में सुबह सुबह के 35 मिनट से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 211 है, सुबह सुबह के 45 मिनट और संध्या सुबह के 45 मिनट से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आपको नई श्रृंखला सीनियर संगीत में तबले का दौर भाग सुनेगा आप सखा। कलाकार है तबला वादक रविंद्र खासमी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिखे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के।

सुनेगा राजदशे जी के आलोक पहुंचकर जब राजमीरा प्रस्तुत करता है राजमीरा।

में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बीच सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष, विषाद, सुख दुख सब कुछ भूल गए। प्रेम के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गई।

0: भगवान की सन्निधि का श्री रविन्द्र ठाकुर जिनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिका इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज हम आपको सुनवाई हुई।
1: नमस्कार श्रोताओं, रविन्द्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से तीन ताल और एक ताल, तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रही।
2: जी हाँ,
1: इसके बारे में आप कहेंगे?
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं,
1: जी,
2: जैसे ख्याल गायन में तीन ताल में ख्याल होते हैं, एक ताल में ख्याल होते हैं, कुछ झप ताल के भी ख्याल है, तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए एक ताल हम लोग जो बजाते हैं, तो इस ताल में जो है उसमें विलंबित एक ताल, तो विलंबित का मतलब ये है कि दो मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ, दो मात्रा के बीच वाला फासला कम होता गया तो वो मध्य लय, और भी कम हुआ तो वो द्रुत लय। ये जो है, ये फासला मतलब एक गणित है और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी एक ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, तो एक ताल तो है धिन धिन अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं, तो मैं अति विलंबित से तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजाते हैं कि

0: इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में,
1: जी
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए, तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और ताल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है, तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है। सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, मुझे सम पर आना है। तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए, तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, जप ताल है, रूपक है, तीन ताल है, इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्य लय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं और मध्य लय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना, तो ये एक तरह से चैलेंज होता है और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है।
1: तो एक ताल की खूबसूरती जिस गीत में देखने को मिलती है
0: जी,
1: वो कौन सा गाना आपको याद आ
0: रहा है? खेत की गुलाब जड़ी
1: चंपरण बन
0: जी,
1: बसंत का गाना
0: भीमसेन जोशी जी पंडित जी

0: प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में, उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: आगे राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है, मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है काल है, मतलब झपताल जो है धी ना। अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है, फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है, तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत, इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों में कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक झपताल भी निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: वैसे तो कई सारे गीत है
0: जी,
1: आवाज देके हमें तुम बुलाओ
0: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जो राग शिव रंजनी में आधारित है। तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद।

संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिखरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिवस है, इसलिए भूले बिखरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी के लिए चुनिंदा गीत। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं

अपनी बात करने का, सिर्फ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सिटियों के लिए सिटियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी

0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आज की सुबह को बनाए खास, भूले बिछड़े गीत, हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की आवाज में आजाद गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं श्री राम।

शनिवार दिन में 2:30 बजे।

0: उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा आई लगता अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान

को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज है सरस्वती जी का राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिवस, तो आज से हम है राहुल प्यार के इस कार्यक्रम में कुछ युगल भी राजेंद्र कृष्ण जी के कलम से। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। नींद हमारी खास तुम्हारे फिल्म के गाने के साथ राजेंद्र कृष्ण जी का और संगीतकार है मदन मोहन।

sin nada.

0: बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं क्या जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा देश के सभी धर्म के लिए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं शायद खन्ना। फिल्म का नाम आओ प्यार करें।
3: तुम अकेले तो कभी

0: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं की छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास भूमि में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,65,490 करोड़

0: जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 50,000 आसपास

0: साथ रखकर अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: नेपाल के

0: इस फंडामेंटल रियलिटी में।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1,070 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय

कैंसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडम को मध्य के बाद ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई

कि मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में 9वें शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए।

अलेक्जेंडर एसपीओ 57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली समाधान नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की छुट्टियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक के संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली को

मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी

प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक है। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही है, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या कभी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

उसी तरह हमारे कार्य कलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि पूरी जंगल समाप्त हो रही है। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाए।

सुनिए आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर के

किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलो। विजय सिंह कैलाश के और मीत ब्रदर्स अंजन की आवाजों में कुमार का लिखा हुआ मीत ब्रदर्स अंजन का प्रदर्शन किया जाना। फिल्म का नाम है क्या सुपर

0: से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल रेडियो भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाजों में मुस्कान फिल्म। गीतकार और संगीतकार हैं श्रेयस पुराने।

राष्ट्रीय सेवा देश की सूची में लोगों से अधिकार कम संभव है कितने लोग

70,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुन निकल जाना। आप सुन रहे हैं वीर भारती रात्रि से हुआ देश की सुखनी धोकन और कार्यक्रम चल रहा है चित्र लो लीजिए सुनिए दिल भर में दो इस दिन का गाना। आवाज है सुनील चौहान की, लिखा है से जावेद अख्तर ने और संगीत और

recording he did.

पदों में कभी प्यार कभी इकरार,

जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही रविंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्युनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही प्रयाग गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की सच, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थी और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सज

अभी एक और फिल्माई बड़ी बहन जिसके संगीतकार थे हसनलाल बहरा, राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के

के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग

संस्कारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे आयुष्य लिखी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में

0: gerçekçi bir reddi görgüsüyle hallendirir. Durumu
1: मन की बात के लिए आपके मन की बात

बारह बजे के बीच भविष्य निधि कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात।

inside

saudara tentu benar untuk

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँचा।

0: आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती।

0: पवित्रा, अमर और अतुल, देवता संतोषानंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गाना स्वतः भी आपने सुना। बोल भी इंदिवर की, संगीत निर्देशन डॉक्टर

गहरा रख चुके हैं, बस उसको कर जाना।

अपनी बातों के पछतावे में आज का सुकून खो देते हैं। जीवन कोई दौर नहीं है बल्कि हर एक पल का अनुभव करने की एक यात्रा है। जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने के लिए हमें ये समझना होगा कि बीता हुआ

ये जो भी है जैसा भी है जितना भी है हमें

पश्चिमी लेखकों को उन्होंने पढ़ा और कविताएं लिखी। 1940 के दशक के मध्य में वे एक कविता लेखक बनने के लिए मुंबई गए और 1980 में पहली बार जनता नाम के फिल्म की पत्रकार लिखी और उसी वर्ष एक और फिल्म जंजीर में गीत लिखने का मौका भी मिला। लेकर आकर्षक और हास्यपूर्ण गीतों तक उन्होंने सहजता से विभिन्न शैलियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

आपको बता दें कि राजेंद्र कृष्ण को हिंदी सिनेमा के सबसे अमीर लेखक माना जाता था। उनके गीतों की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि बड़ी बहन के निर्माता ने उन्हें खुश होकर ऑस्किन कार भेज की और

खोल और खानदान के लिए गीत लिखकर वे मशहूर हो गए। रविंद्र कृष्ण जी तमिल भी जानते थे, जो तो उन्होंने 18 तमिल फिल्मों के लिए पत्र लिखा और गाने भी लिखे। उन्हें खानदान फिल्म के बीच मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने कामयाब भी नहीं कई नायाब

Birkaç var mı benim?

ऐसा नाम भी है जो साहस, करुणा और आदर्श का पर्याय रहा है, और वो नाम है सुनील दत्त। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। जून के दिन 1919 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में जन्मे सुनील दत्त ने छोटी उम्र में संघर्ष का सामना करना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष की उम्र में उनके सच्चे पिता का साया उठ गया। विभाजन के समय के दंगों के दर्द को उन्होंने बेहद करीब से देखा था। इन परिस्थितियों के बीच माँ ने पढ़ा और वे पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। अपने खर्च के लिए उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की, फिर

की प्रतिभा का परिचय था। उनकी अभिनीत फिल्में यादें इतनी अनूठी थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई। उन्होंने कैंसर पीड़ित फाउंडेशन की स्थापना भी की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता किसी विरासत की महत्व

आपने सुना हमराज फिल्म का?

से आते हैं क्योंकि बातें अभी बाकी हैं और बाकी की बातें में शामिल हैं। स्वतः देश के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत नारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वहीं कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने श्रम और कर्म दोनों से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उनमें से एक रहे उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जिनका जन्म आज के दिन 1879 में हुआ था। युवावस्था में ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। वे अयुद्ध बम कांड के प्रमुख षड्यंत्र कार्य में शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लंबी सजा दी। जेल में बिताए अनुभवों को उन्होंने अपनी किताब निर्वासित आत्मकथा यानी निर्वासित की आत्मकथा में लिखा। ये किताब सुनाओ आज भी इस दौर के क्रांतिकारियों के संघर्ष का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। छोटी के बाद उन्होंने पत्रकारिता को हथियार बना। देश बंधु चितरंजन दास की पत्रिका नारायण से जुड़े वीरेंद्र कुमार घोष के साथ बिजली पत्रिका का प्रकाशन किया और आत्मशक्ति साप्ताहिक का संपादन किया। उन्हें उनके लेखन के लिए भी 3 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। 1926 में वे रिहा होने के बाद रुके नहीं, फॉरवर्ड, लिबर्टी और अमृत बाजार पत्रिका में पत्रकारिता की। 1945 से वे दैनिक वसुमत के संपादक रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी धर्म और कर्म या फिर विदम बना, उन पंचांशी, पथेर संधान, हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे। उपेंद्र नाथ उन क्रांतिकारियों में से थे जो बम पिस्तौल के साथ साथ कलम से भी लगे थे। जेल पत्रकारिता लेखन के हर मोर्चे पर उन्होंने बता दिया कि आजाद

बैठकर खुली हवा में बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देख सकते थे। शुरुआत में इस थिएटर को ड्राइव इन नहीं बल्कि पार्किंग थिएटर कहा जाता था। इसका विचार रिचर्ड हॉलैंड हेड का था, जो एक फिल्म प्रेमी और ऑटो कंपनी

प्रतिमा को चेस्ट में बैठने में दिक्कत हुई थी। कार में फिल्म देखने का तरीका सोचा था। उन्होंने पेड़ों के बीच स्क्रीन टान कर और कार के बोनट पर प्रोजेक्टर रखकर टेस्ट किया था। खराब मौसम में भी फिल्में देखने और कारों को सही एंगल पर पास करने का परीक्षण किया। मई 1935 में रिचर्ड को इस अनोखे बिजनेस आइडिया के लिए कानूनी अधिकार भी मिल गया। उन्होंने $30,000 लगाकर इसे शुरू किया और शुरुआत में टिकट के

के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से दुनिया की पहली वैक्सीन विकसित की है। इस वैक्सीन का इंसानों पर शुरुआती ट्रायल भी हो चुका है। आमतौर पर वायरस लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं, यानी म्यूटेट होते हैं, जिससे मौजूदा वैक्सीन जल्दी बेअसर हो जाती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया और एक सुपर एंटीजन तैयार किया। यह हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह ट्रेन करता है कि यह वायरस के पूरे परिवार

分开。

ప్రభు నమస్కారం చెప్పేసి అతని దేవుడు శ్రేష్ట నమస్కారం.

Yeah.

0: un īsts sēdzu.
1: Ooh, I've got some

change everything, maybe. Dostu, अभी भी हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है. आज उनका जन्मदिन है. आइए सुनते हैं यादों के मेडिकल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं.

0: तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम तो खाते

تھے ہم

0: Adam is Jacob. Jacob. प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय हो।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रही हैं कार्यक्रम यह समय से आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंदी के संगीत निर्देशन में जयचंद्र कृष्ण के बोल आवाजी मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म का नाम गोपी।

0: से पहुंचे दिल्ली। बचपन से
1: ये कारण की हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है।
0: विजय सुनील, लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म

0: है तो बहुत सारी बीमारियों का एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियां

0: अगर आप टाइम से नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके बीच में है जनदेवी कलाकर लता मंगेशकर और ऋषभ भंसी, जयचंद्र कृष्ण की गुंतु और श्री रामचंद्र का संगीत है।

0: व्यापक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: और आज का ज्यादा से मंदिर परिचय

कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। और आपकी टिप्पणियाँ, आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यही कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा कम कभी आगे, कभी कभी पीछे कम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी तो जब ऐसा होता है, यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है, कभी समय से पहले कुछ हो जाता है, तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है। और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत सुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, एक श्रोता ने लिखा कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत करते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी। जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या जिस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम आपके साथ साझा करते हैं।

the rebellious kind of Santa. हमें आपकी संरचना से हो गया है यूँ कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है तो बस आपके गीतों में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं आज के सभी गीतों में मेरे का संबोधन है ना कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रहे है ना इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहाँ गीतकारों ने उसमें खुद से किसी वस्तु से किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है इसके माध्यम से जैसे कि सूरज रे जलते रहना

सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, खूब तजुर्बा और पार्टी का स्ट्रेटजी के अनुसार निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।

करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।

want us to be

जैसा लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट से लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि जब सुबिला सफर की रेल आए हम उसमें सवार हो इबारत को देख सकते जिज्ञास की प्यार हो जाए। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू। देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर भरोसा रखें और उसके सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाए अथवा परिश्रम करें आगे बढ़े। मन रे तो काहे नदी भरे, आपने इसी का चयन किया है और वाकई हमारा

फिल्म में आप सुन रहे थे साहिब लुधियानवी का लिखा गीत, मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्र लिखा। कितना खूबसूरत गीत, चेहरा और सुंदर दार्शनिक लोग यहाँ पर रेता देखा आपने। रेह का अर्थ यानी यहाँ मन में आत्मा से है और यहाँ गीतकार जो साहिब लुधियानवी है अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मन सुधीरे क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप शाम को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे। वे मन मन को समझा, अपने आप को समझा, कितना गहरा की और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत। अपने गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी। बहुत सुंदर वही गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो सभी इस सफर में शामिल हो गए हैं और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आपकी पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई, वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जोड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई है तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तो पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी, मिली ठंडक आपको। वही श्रोता ने कहा कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है, सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है, ये सिखाता है कि जीवन और परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है, रात कितनी भी लंबी हो सवेरा जरूर आएगा और इसी तरह हमारे जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं कर्तव्य सरकारी प्रकाश बिखर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वही श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए जो जो याद आएंगे जोर से जाएंगे। सूरज से जलते रहना फिल्म हरित से नारामती मन रे तू गाहे नदीर धरे, और आपने और भी गानों का एक बारे में लिखा है तो हमारी जो आज की सवाल

सकती है शरीर यानी दुनिया में सभी मानव आत्मा की जो नहीं सुनना की है। अब देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों की गठनी और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी छीन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा पिंजरे के पंछी वे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदासे जी, शब्द जाल में जवाब होती है तो कुछ नया होता है, एक बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आराम से सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुटका टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यास है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता है मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा, नजर उठती है आसमान की ओर जहाँ सूरज रोज जलता है अपने हिस्से की आँख कहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो अक्सर उनकी तन्हाइयों का कोई नहीं पूछता। क्या

कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की चीर कर रोशनी और प्रकाश की किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। बिल्कुल आशा का संचार तो आपने भी कर दिया, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं। और क्या चाहिए आपका, ये जो है ना मैं हूँ ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ है तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहेगा, है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख दिया है, हम पढ़ेंगे जल्दी। वही हमारा दूसरा सवाल है कि रे का एक काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है। जैसे मैंने कहा।

बोल के और सोने सोने तक नहीं। कितने गहरा दर्द भरा केस था जब हम किसी को पुकारते हैं कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रही आ जा रही आ जा रही, है ना। बस यही है जैसा प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की बात में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि वे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान कैसा हो तो संभव है। लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा, बात तो समझ में नहीं आई भाई। जहाँ सूखा होता है वहाँ भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक गुण के लिए तरसते हैं। लेकिन अभी तो कहावत प्रचलित है कि जहाँ कोई नहीं वहाँ पेड़ का ही पेड़ प्रदान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, बूंद मिल जाए प्यार की, बूंद पानी की, बूंद जैसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपके प्यार की बूंद, या यूँ कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए हो। अरे आना तो चाहिए, आप कहीं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मेरी श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा कल आप सुन रहे थे, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबके अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचेंगे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप है तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहाँ कहाँ से दूसरों ने गाने खोज खोज के लाती है, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम की दिलचस्प पहली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है, हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसकी कई संभावनाएं हो सकती है। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे चुका है न पिए, भीड़ धरे ओरे पिया, रे कबीरा नैना रे सजन रे चरक मुसाफिर मोहलिया रे, क्या बात है बहुत खूब। जब मन उदास हो जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशती हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है, बिल्कुल। आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुँचते हैं लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं, मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, शब्द की बारिश से हर जख्म खिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गावी दिल से मोल, दिल्ली से मोल मंगाई दे दो बूंद पानी का। अच्छा इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और एक शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से गीत शामिल होना चाहिए। आपके बीच में गीत शामिल हो गया है और क्या चाहिए, देखिए ना आप कितना गहरा उतर के उस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक छोटा लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। 8-12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई तो पढ़कर मन प्रफुल्लित हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखों का तालाब के पास में खुली हवा में चलने चला जाता हूँ, वहाँ रेडियो बजता रहता है और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है।

अपने मेले को देगा और वो एक छोटा लिखते हैं कि सुजीरा सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया। तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे, मन रे बिल्कुल भूत मेरा क्या नाव रे, क्या बात है मेघा रे बजरा खाई रे खाई है रे, हमने कसम जा रे बाबा और बोले रे पतिहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है, आ जा रे क्या पुकारे, ये अगला गीत आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपीता उतार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वही एक छोटा लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीरे धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट है बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वह आज के कार्यक्रम का चिंतन से दिल को छू गया है जहाँ आपने रेखा संबोधन वाले गीत सुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमीन पे आप बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा।

सही है, आपका इस चुनाव भी बहुत सही है। मैं एक छोटा लिखते जा जा रे जा बालम्बा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा। जरा सा झुमलियों में नारे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने सुना है, बहुत सुंदर। वही एक छोटा लिखते है कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते ही। शुक्रिया मेहरबानी। वही एक छोटा लिखते है

का समाज झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे। वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है। रे मन सुर में गा और पिया तो नैना लागे रे, क्या बात है। रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो

संगीत की बात है मंदाकिनी जी, आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे

कि आपको हार्दिक नमस्कार। वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आपका गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के रोंगी हरा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक शोभा लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा कहते हैं जरा के अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं एक छोटा लेते हैं कि मेघा रे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाने लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। देखो सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इंतजार वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना रेखा प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ जसपाल सिंह की आवाज सुनकर आप

श्रोताओं में बने रहना इसी रिले सफर में हमारे साथ कभी अपना साथ न छोड़े, लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही हम जाते हैं इस कार्यक्रम की यानी सुरीला सफर से। अब मैं दक्षिण सूची को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी किसी

पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक है। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही है, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

तरह हमारे कई तनाकों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाए।

प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल है। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउड स्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए ये बड़ी तक पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाए। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपे, लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे तो आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

0: se cuánto y pasarme, no lo pusimos. Era la forma de mi falta con muchas más gracias por ver el Jari. Fíjese ya, sobre cantidad del tipo de T20 antes de hacer que el tiempo y pasándole verlo sobre el sistema y bar y mi sangre. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद उत्तरप्रदेश के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ा।

ni umwe mu ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए

की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोष के विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डेटा सेटों के व्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिखर खरल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जल संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।

किसी समाज ने कलेजी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है।

में घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार के अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और

0: बचपन भी बर्बाद हो गई है। पिछले कई वर्ष यहाँ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40% से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जबकि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नवन्ना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2026 रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो

अपने आप परियोजनाओं को लागू करें। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 8.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेश और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबर समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्ति को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरी सिंह के गांव में

0: not change the fundamental reality.
1: मॉरिशस में पिछले एक ही दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस

0: hlavní mocem těch žen je dílem po asi vrátní hry. Tlumače to dnešní den dělatní zelé na hospitici, hlopáno, syndrom barupa, vytěru, sejka, vnitáta, tak to si probě velký rozka vrátky den, vždycky je mocem těch hlopáno, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru, vytěru,
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी ट्वेंटी श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की प्रतिष्ठा को कम बनाया गया है। लखमर बाको कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहले बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। श्रेयस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक मार्च से टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सायंकाल तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के टाकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम

सिलेक्ट है। माता डिंगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री किशन खन्ना से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन

0: की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री किशन खन्ना से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर ट्रक से वाहन के टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरला और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और फिर सही है, सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विविध भारती से बोल रही हूँ। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की।

से आज के हिस्से में बनों का पहले दिन से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की और एक फिल्म है

में हम आपको फिल्म के गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मशरूर सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन सिंह बर्मन हैं।

सुनते हैं दत्ता राम का संगीत, हर्षद जयपुर की रचना, लता मंगेशकर और मनोदीप युगल स्वर, फिल्म का नाम है कागी नंबर 911।

लिखा है, आप ही अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से संदेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर और जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवल, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर इशारी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं,

सिंह, लकेश शर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अमरावती से। सिद्धार्थ गोंडाने, एस गोंडाने प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाली का, और कोटवा नारायणपुर से आपने ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, कुमार राय और भक्ति राय। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपनी पसंद का

guys, Jason Member, Roshni Member, David Yang ji. इसी को सुनना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम सावित्री साहू ने और दत्तरे की भाटापारा से ये है हीरामणि वर्मा आपसे भी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

जीवन पर आधारित कार्यक्रम मन चाहेगी। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमर।

श्री आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा खातून लखानी, विक्रम लखानी ने इनके परिवार वाले इसे गाने को सुनना चाहते हैं। महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले

आपको भी नहीं, हमें खर्ची देगी। ससुराला बदली से डॉक्टर मसरूर खान, मुशर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वारवे थी और उनकी परिवार पर गाँव बुलडारा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश काले और उनके परिवार पर थे। रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलजी डोरी, लल्लू राम, पूरन डोरी, छोटू टुनटुन और दूसरे पर मधुकर और राजीव यादव, डॉक्टर प्रशांत राजीव यादव।

से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, करेला रिसोर्ट से आपने सांगी सर्वन और उनकी प्रेरणा सही आपके पसंद का ये गीत आवाज सलमा आजा की और निखिल है निकाह।

सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, लेखक

तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक

0: करता हुआ कंपनी की तरफ से नज पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआवजे की दरख्वास्त की और रसूले वाला ने इसे मुआवजे कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान से सरी तरक्की फरमान और इनके इरादों पर नकाब पड़ा
1: रहे। लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात और ताकत का सही अंदाजा हो सके और इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई।

सुना ये भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं, यह जान पाया इन चार बात अंग्रेजों से सीधे नफाज के नहीं पड़ सकते। तो बंगाल में भी ऐसा नफाज जानते हैं जो इनके इशारों पर लाते हैं। अब मीर जाफर को फिर मस्कर नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया। यह आरंभ बना अंग्रेज तो बंगाल बिहार और उड़ीसा पर पूरे तौर पर हावी होना चाहते। यही नहीं सोचा इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को खड़ा करने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम भी कामयाब नहीं हुए थे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो है ही,

आया नवाब और अमीर नई पंखड़ियों की तरह हमारी अमदाद की जान पहुंची। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। आलम बड़ा वो दो एक बार से इस दफा हमारे जाफरों से बहुत

take it.

चलती है, जिसको हुजूर ने पढ़ा दी थी। उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा बना रहा है। तुम्हारा मतलब फैमिली से है? क्या हुआ हुजूर? वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संगीत की और गुरुद्वारे से, और अब क्या हुआ उसे हुजूर आना? पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी खैर संगीत हो चुकी है।

जरा सिंगली जरूर है। मेरे नागरिकों की तहसील में औरतों को काफी आजादी है, वो तो बजा है जहाँ बना है, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ खास सरकारों ने खबर दी है कि यह शहरों से दूर जाकर अंग्रेज खोज सवारों से भी गुफ्तगू करते हैं।

0: scappano.
1: Papà,
0: voglio dire, io ho il tuo canale a tua.

वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा। बोला हम पहचान नहीं कमीने कमांडर से कैदी हो गए, लेकिन जब आलम खाना के हजूर में पेश होता है तो वो मेहमान बन जाता है। शमी बहुत करेगा जो मेरे से दर्द लगाएगा

राजस्थानी जनपद सरकार विविध भारती केंद्र है असम के स्टेशन 8 मेगाहर्ट्ज़

to be out.

0: किया कि इतना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं प्यार का हकदार बनूँ, तो है ना। मैं आपको बताऊँ ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप ऐसे हकदार, उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का तरीका है। ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यार भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको, वो तो जरूर है। और अगर इतना दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे ऐसे मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए। तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुँचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुँचेगी आपकी जन्म तारीख से। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
1: मेरा जन्म हुआ

0: सभी याद भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को 10 अप्रैल 1975, तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए आप 45 साल के जवान नौजवान बात कर रहा हूँ। तो कदम साहब मुझे ये बताएंगे जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है? तो ये बहुत ही एक
0: छोटे से बच्ची में चौल में हरिम दास चौल था, प्रधान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बड़ी बच्ची थी। हमारे घर के दरवाजे में हुआ करते थे, पर्दे हुआ करते थे, तो प्यार मिला, और इट वॉज वेरी यू नो कॉस्मोपॉलिटन। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई से एक थे, अदरवाइज वेरी कॉस्मोपॉलिटन वाला फील था। किसी भी घर में आना जाना, टी वी नहीं हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, उन लोगों में जो और यू नो लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह से ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला था, मेरे यू नो एज जो यू नो मेम्बर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिर फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुलाया जाता था, अपने और उसको बुलाकर ये नाचेगा हमारे लिए।
1: लेकिन गाना तो सुना सकते हैं, बहुत जरूरत नहीं क्योंकि मैं पेंट सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस
0: मुझे पेंट का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट पीटर्स स्कूल, तो मैं रहता था अमेरिका में, क्योंकि मेरी माँ

कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंग टू पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरमेंट में पला बढ़ा। यू नो बहुत बहुत तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है, उनके आई वॉज वेरी हैप्पी और मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोले कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट

कॉन्टेक्स्ट थे जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर दिया, बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने मिल कर दिया। उन्होंने अच्छा लेकिन अभी अगर मैं कैसे सिखाऊँ, मुझे तो ये सब आता नहीं है, समझिए मैं कुछ भी कर लूँगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर दिया तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर कुछ तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब दो महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा एक एनुअल डे होता है वो सभी सर्टिफिकेट साथ में देते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एजुकेशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने इंक्लूड लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी वो जो जो नशा मैंने फील किया वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा, मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझसे वाहवाह देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया। और वो कितनी चीज़ें याद है आपको जीवन की, वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था। तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम तो वो पिक्चर मैंने वो रेडियो पिक्चर का था एटीज में, तो मैंने वो गा दिया तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्ता है, अजीब दास मेरी बहनी रेडियो से सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, था तो वो लिखती थी, तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं वो दोनों वो हर गाना जो आता था वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी होता था रेडियो, तो वो हम दो तीन बार सुनते थे रात तक कि वो यू नो वो लफ्ज जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था, तो वो भी याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीत दासा के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार बुलाया, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। और मेरी आवाज़ यू नो छोटे बालक की तरह थी, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली एंड वो सूटिंग। फिर बाकी इसके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत सबूत कर गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में देख के आप डांस करूँगा।

0: दोनों जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया, जो चीज लोग नहीं कर रहे हैं मुझे वही करना है।
1: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
0: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना, आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं। लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। मारनी पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत, चाहे तुम पढ़ जाए मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम फिर पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा कहता कि नहीं मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज़्यादा लेकर आऊँगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते। तो मैं बहुत बड़ा जिंदगी भी था तो, और रिजल्ट भी लिखा था पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रहे हैं, मेरी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये, तो फिर मेरी माँ चुप हो गई। अगर तुम कुछ भी हुआ तो मेरे पर नहीं आना चाहिए, अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन ने कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक छोटा भी था, आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझे ना बचपन से लेकर क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा कर गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आप मेरे जैसे वो आगे बढ़ गया तो मैं कहूँ कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक उपकरण और एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो है ना आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा उसके बाद, लेकिन वो एक चीज़ होता है कि हाँ मैंने कर लिया है। एक बार आपने उस चीज पर पड़ गया ना तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता
0: है। तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है उन्हें स्टेज पर चढ़कर बात करना या एजुकेशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आगे नहीं जाते। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देख कर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देख कर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया, तो

0: जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी और भाई बहन को बुलाया कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, इसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल से पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी नीचे जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला कि मेरा काम हो गया
0: है,
1: बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी के साथ भाई बहन थे उन्होंने सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस की, तो मैंने भी ट्यूशन लिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मैं डांस का लगाव बहुत ज़्यादा ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती तो उनको डांस सीखा था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो कॉलेज फीस और सभी दोनों चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी कि ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल हो जाना चाहिए, उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ने भी कोच किया था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनका टाइम नहीं होता था तो उन्होंने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनसे आप ले लो, यू नो ये आप पढ़ा दो और ये आपकी फीस जो भी फीस है ये आपकी।
0: जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है, इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस। बहुत शुक्रिया। तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप जो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस में साइंस किया था, मुझे डॉक्टर बनना था तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स लगे थे मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहाँ से स्कूल के मैंने होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस ट्यूशन में देखा गया उन पैसे अच्छे मिल गए थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यू के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिल रहे थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
0: तो
1: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूँ तो मैं शायद सफल हो जाऊँगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था और फिर तुम माइक्रोबायो बात सीख रहे हैं, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तोहफे की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये यू नो ये अमीर लोगों के लिए यू नो शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं और करियर भी बना

साथ हैं वो सभी मतलब यू नो आई टीचर है या यू नो फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन जॉब है। मैं थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ

0: बच्चे बड़े हो जाएंगे बोलेंगे अभी खत्म तो तुम क्या करोगे? अच्छा तुम जिसमें से आएंगे अच्छा अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल बात है और मेरे सर के ऊपर ही मंडरा रहे ये होगा तो क्या होगा ये होगा तो क्या होगा क्योंकि वो सब बहुत ही सेंसिटिव हुए इंसान है उनके पास एक फिक्स करियर है।
1: एक बात होती है तेरे मैं बताऊँ मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है वो आदमी से डरता है क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा है।
0: अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लोग सपोर्ट मिलता है हमारे मेरे डैडी तो मजबूर है उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर अगर बच्चा आगे जाए
1: वो ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे आगे बढ़े हर बालक की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए
0: खुश हो
1: तो
0: खुशी वही चिंता थी उसको तो डॉक्टर बनने वाला था माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी किया सिस्टम हो जाए मैंने उनके कोर्स भी आया है ऑफर तो फायदा क्या इतना पड़ता है इतना पड़ता है तो कोर्स लेके आता है नौकरी भी तुझे हाथ में मिल जाता है करना चाहता है ये क्या बात हुई तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा ही कैसा
1: इंसान हूँ और फाइनली सर आपके मदर फादर खुशी हुई कि नहीं
0: वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब चार साल बहुत जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊँगा मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूँगा लोगों को भी पता चाहिए मैं क्यों जाऊँ घर घर तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊँगा लोग मेरे पास आना चाहिए तो मैंने यू नो एक स्टूडियो लिया पैसे खर्च किए जो भी इकट्ठा किए थे पूरा मेरी मेरी इतनी जवानी जो मुझे पता नहीं कहा गई मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है आपने करियर में लगा दिया और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आ रहे नहीं क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को अगर मैं किसी के घर पर जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है कि मैं उनके घर पर आ रहा हूँ इसलिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है बिजनेस मैन नहीं होता
0: नहीं होता वो अकल बाद में क्या उड़ रहा था कि मेरा सवाल मैं सच में ना जो मैं एक चीज गाड़ी था कहता हूँ मैं मेरे सपने हाँ ये करूँगा मैं ये होगा फिर मैं बात तो करूँगा फिर लोग मेरे मेरे पास आइए देखिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया है और यू नो कई बड़े बड़े ख्याल बुलाओ मेरे बाद में फिर मेरी बड़ी फिल्म आएगी लोग मेरे पास आएंगे और मैंने फिल्म करूँगी मेरा दिमाग सपनों में

0: सामने होता है कि मेरे जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकालना है। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे पहले पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे, किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहाँ अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई कि नहीं तो ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो माँ इतना पढ़े लिखे हो और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी नजर से मिले तो कहीं कोई गाना पीछे करता था विविध भारती।
1: बहुत सारे गाने

0: गर्मी बहुत जल्दी होती है तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा और मेरे साथ बंदे हुआ करते थे। तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक कई बार पता नहीं कितनी मुझे बचाया, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। इसलिए मैं 5 साल ऐसे ही गवाए हैं और मैं उसके बाद भी ट्रेन नहीं चल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
1: दोस्तों ये जो टैलेंट जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, ऐसे सिर्फ सुनना है और दूसरे टाइम में लिया ले रहा है, इस पर अमल बिल्कुल नहीं कर रहा है। आपको ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपहरित हो जाते हैं। इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़िए।
0: सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या यदि मैं अपने आप को खुश करना चाहता था या मैं जब भी मैं उदास नहीं होता हूँ, मैं ऑलवेज खत्म करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता नहीं था गाता था जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, और को धोए

0: से रहती है, उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट बहुत नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: और सो अगर आपने लाइफ का नशा किया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे पीछे पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही थे वो तेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूँगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने इन शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग कि क्या है, तब तक तो मुझे कोई मन पूरा मेरे ध्यान
0: देखा
1: जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है जो नशा लाइफ में है और जीने में है,
0: तो कभी वो लग गया

0: जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया। अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं। तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं किया था ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचता था कि ये शायद मुझे कौन देगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो थे, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियो भी मिले जैसे शान का एक गाना रिमिक्स, तो सभी रिमिक्स करना बहुत करता था। शान गाना रिमिक्स किया था, उसके फिल्म के था जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं अप्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, लेकिन सभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें भी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई दिले जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं वो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक करियर मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी ट्रेडिशनल फैमिली आती थी उनके बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो

0: तो मैं कहती हूँ शायद इससे ज्यादा भी होगा। तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
1: मैं आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला, क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर के नाम रहे हैं
0: तो ये बहुत दिलचस्प है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफी करने लगा तो मेरा नाम लोगों ने सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेज को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर थे वो मुखर जा रहे थे मुझे यूज करने के लिए, तो कोरियोग्राफर ये तो अपना काम देखिए निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँगी तो उनके साथ काम करूँगा कि नहीं, क्योंकि तुमको कोरियोग्राफर हो तुम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंदर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगाने वॉइस का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉइस जो टेक्निकल वॉइस था वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की
0: वो वाला था, तो मैंने रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट थी जो वो आई थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, मैं फिटनेस का दौर चल रहा था तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाया था।
1: उस पर हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
0: तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसको मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्होंने मुझे ये यू नो आप पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये कोरियोग्राफ कोरियोग्राफ करें जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉइस करना है, आपको तो आता ही होगा आप तो ईसाई धर्म के हो। तुमने कि ईसाई धर्म का ये मतलब है कि उनकी वॉइस ये जो तुम करते हो तुम्हारे मतलब ही होगा, नहीं मुझे नहीं आता ये सही तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं ये तो पाना चाहिए क्योंकि हमारी प्रेमी कोरियोग्राफर नहीं कर पाएंगे और जिस तरीके से तुम चलते हो ये तुम्हारी प्रेमी है लगता है कि तुम कर पाओगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो, मैं आमिर से मिला अपनी कोशिश से मिला और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि नहीं वॉइस तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th century क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो कहानी है, कहानी है तो 18वीं सदी की जो वॉइस हुआ करती थी मेरी वॉइस वो हमें चाहिए बताइए। तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर काटने लगे, पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं।
1: मैं यही जानना चाह रहा था मैं आपके लिए बीच में रोक रहा हूँ कि आप कोरियोग्राफी करते थे में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग अलग होती है, उसके ट्रिक्स अलग होते
0: हैं, वो तो आप जानते नहीं थे।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया ये सवाल तो मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए तो आप दोनों चीजों को जोड़ कर बताइएगा।
0: तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो क्योंकि सच बोलोगे तो उसका कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं लगा और ना ही मुझे मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा है, रीना ने मुझे फिर से रूम में बता दिया और फिर उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे तो आशुतोष मिनट चाहिए आप बताओ आशुतोष तो नाइस करें कि सर जाने की बात नहीं है तुम बहुत डरे हुए हो आप डरो मत। तो क्योंकि मैं बहुत आई थिंक मैं 24 ईयर्स फिर नहीं करूँगा, बोला मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना, तो क्यों डरे हो आपको आकर मैं सीख लूँगा लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। अच्छा वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारे पास अनिल जी अनिल मेहता जी है वो समझ रहे हैं सबसे सीधे हम समझ रहे हैं, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस सिखाओ कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है आमिर ने बोला कि आप डरे मत आप करो ये जो काम। तो फिर मैंने वो साइज सीखा, मैं एक सलोनी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है तो वो फिर वो जानती थी वो पर्टिकुलर चीज़। तो मैं उनके घर गया नर्सिंग की रूट कंपनी का मतलब आई मैं गया मैं बोला कि मुझे सीखना है बस ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने बर्फी की अपने आप को सीखा फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली गाना एयर रन का गाना था वो मैंने लिया कोरियोग्राफ किया फिर बुझ गया वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साथ साथ कहा सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं कब यू नो नगाड़े को बोलूँ कि

0: दो दिन के बाद एक बुक किया, इट्स कॉल्ड द फाइव सीज ऑफ चावड़ा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता। और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरे के बारे में सीखना है तो बुक फॉर टू गो फॉर द फाइव सीज ऑफ चावड़ा। तो भी मुझे पढ़ने लिखने बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात आ गया सब कुछ, और मेरे नोट्स लिख देती थी जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने नोट कर लिए। मैंने अमिता सर को बताया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। तो आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट कर रहा कि मैं सीख गया, और फिर मेरी टीचर से मेरी छूट लग गई और मैं बहुत नर्वस था।
1: पहली बार मैं तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी अंदर की, और आशुतोष की भी हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली नॉर्मल फिल्म,
1: लेकिन उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे पेरेंट्स का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिली थी वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूँगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया था लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे, बड़े बड़े हस्तियों से जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, रेवड़ी मौसम ने उनका बहुत ज़्यादा काम करता था, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया। जाहिर भी बात है ना, लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिक्कत कोरियोग्राफर से मेरी कोई औकात नहीं उनके सामने। मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर, लेकिन शायद कोरियोग्राफर के नाम साथ में जुड़ गया तो वो लोगों की नज़र में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया। ये मेरी खुशनसीबी भी थी, इसके लिए शक्तियाँ भी हैं और मैं इसका खुलासा करता हूँ। ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं चला, कोई बड़ा गाना नहीं चला, छोटा सा एक पोर्शन था।

थे 8 बजे थे, जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस थे, अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। प्रस्तुति सहयोग एच आर पाटले, प्रस्तुति सहयोग

समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती।

लिए नखमे हृदय के वहां साथ पर गाए नहीं जाते। उन्हें तो बस वैसे जा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत

ネホ、ベジカイバラスレホ、プラトネジャギフィアテホ、ホトパハモーフィナメホ、トヒ、コイスンデ、フィナメヘタ

जब कभी रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग।

थी। ये भक्तों का नाम लता मंगेशकर एस पी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में ये गीत अभ्यास सुन गए थे। दिलीप साहिर ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था।

ti vede. So much is in my didn't hide the day. Little party, but

मिस्टर किशोर कुमार और 700 आवाजों में भी तभी आप सुन रहे थे मिस्टर नटवरलाल से लीजिए ये अगली पेशकश प्रोग्राम तरानी मेरे पुराने की

सरकार की आवाजों में भी अभी आप सुन रहे थे। नदी रहो मुन्ना भाई फिल्म का नाम था और इसके साथ ही अभी वक्त है थोड़ा सा अंतराल लेने का। बाकी के लगे आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती देश की श्री विधन। कुछ पदों में आप सुनेंगे समाचार।

विज्ञापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है।

विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया।

सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर खींचे से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर

नंबर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तारीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी।

मातृभूमि की नवी आप सुन रहे थे हम आकाशवाणी जमशेद को की दूरी भारत की चिंता से दूर रहे हैं मैथिल प्रोग्राम में आज चंडीगढ़ में भूपिंदर सिंह और मिथाली सिंह की गाई हुई। सबसे पहले नसीम

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की जारी सी गई प्रोग्राम और

Christ gibt es zu tun, wo Kinder

देखे और उसके देखे

साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री राज्यपाल द्रौपदी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करें। हम अपनी

describing the situation of artists. हमारा तो उतना मुश्किल काम नहीं होता, इसीलिए आपको देख के मैं चरित देती हूँ। और मैं डरा गई थी उसके, मुझे लगा काम कैसे कर सकते हैं इतना बर्फा ये है, लेकिन वो आपके अंदर क्या है वो देखो, प्रेम है ना। आप जैसा भक्ति सबको नहीं आता है, इसीलिए आपको मैं सलाम करती हूँ। बहुत सारे राग हिंदुस्तान में मालकों से, मालकों से बहुत गाने हैं। एक है मालकों से राहुल देशपांडे और मनीष कारेगा कानाडा राधा पंडित का, ये भी बहुत सुंदर मालकों से। और बैजू बावरा में एक मालकों का बहुत सुंदर मन ज्यादा पता रहे हमारे दर्शनों को आज, मीना कुमारी और भरत भूषण का मैं आज आपके लिए

देखने करना कितने उदाहरण की हूँ मैं हमारे प्रदेश में किराना घराना है। हम कभी भी संगीत सीखने के बाहर नहीं गए लेकिन वो किराना घराना के गीत संगीत राग बचपन से ही हमारे कानों के ऊपर पड़ता था। इसीलिए हमने जरा ज्ञान ऐसे ही हमने सीख लिया। हमारे गाँव से बहुत सारे अच्छे गायक हैं। खीरा भाई बटोरेकर वो भी किराना घराना के थे और हमारे गंगू भाई हंसल थे। भारत रत्न भीमसेन जोशी हमारे किराना घराना के थे। हम छोटे थे ना उस समय हम पूछते थे हमारे पिताजी को कैसे मालूम होना चाहिए भैरवी राग। वो बोलते थे भैरवी माने विदा है सेपरेशन और उसमें दर्द भी होना चाहिए प्रेम भी होना चाहिए। वो गाने सुनने के बाद आपके मन में कैसा होता है कि दर्द आता है और विरह का वो फीलिंग भी आता है और प्रेम भी होता है। वो गाना होता है भैरवी। हमारे पिताजी ने मुझे पहचानने के लिए मदद की है। वो मैंने सिनेमा से पहला भैरवी राग मैंने सीखा कैसे आओ जमुना खेती है। बाद में मुझे मालूम हो गया कैसे आओ जमुना खेती जैसे ही हम सुनते हैं वो दर्द भी मालूम होता है प्रेम भी होता है विरह भी होता है। और फेमस सिंगर पंडित जसराज जी और कविता कृष्णमूर्ति भी सुमिर न करो भी अरे मरा ये सब गाने भैरवी से है। लेकिन आज मैं हमारे फौजी भाइयों को कैसे आओ जमुना के तीर बहुत सुंदर भैरवी है ये देवता सुनाता है। आपको लगेगा शायद मैं सब पुराने गाने ही बोलती हूँ लेकिन पुराने गाने में एक मिठास था और एक राग का छाया था मन को जब भी ओछूता था मुझे सुमधुर सरल गंगा जैसा बहते हुए संगीत की इच्छा लगता है। इसलिए मैं ज्यादा आपको ऐसे ही गाना में सुनाती हूँ।

रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने तो आइए सुने इस कार्यक्रम का शेष भाग। मैं बहुत हिंदी सिनेमा देखती हूँ, अंग्रेजी कम देखती हूँ, मुझे हिंदी सिनेमा से बहुत लगाव है। और एक बार मैं पुणे में थी, कोई मुझे बता दिया कि अरे यार हीरो सिनेमा देखने के लिए होता है क्या, ये नामुमकिन है। हमने बताया ऐसा नहीं है, मन है तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक बैग लिया। बैग लेके एक साल में 365 दिन होते हैं,

मेरा चप्पू के सब सिनेमा, दुर्गत के सिनेमा, मराठी प्रभात सिनेमा, ऐसे बहुत सिनेमा देखे हैं। मुझे अच्छा वेल डायरेक्टेड वेल एक्टेड मूवी बहुत पसंद है, वो है मासूम, नसरी दिल का और शबाना आजमी का। और उस समय बाल लगी हुई थी उर्मिला जी, उसमें एक गाना है बच्चों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे बच्चों के लिए भी मैं वो गाती थी, लक्ष्मी की पाकी घोड़ा, वो बच्चों के लिए भी अच्छा और सिनेमा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का था। इधर ओरिजिनल फ्रेंच सिनेमा था, मैन वुमन मैन भी चाहिए, और वो नॉवल भी थी, उसके ऊपर वो हिंदी में मासूम किया, लेकिन बहुत बेहतरीन किया। उसका गाना मुझे अच्छा लगता है और बच्चों के लिए तो बहुत उत्साहदायक गाना है।

मजबूर एक्टर थे और बहुत सुंदर शादी होती है, आनंद हो चाहे अमर प्रेम हो चाहे आराधना हो और बहुत सारे और फिल्म अच्छे थे और उनके गाना भी बहुत अच्छे थे। हमने सुना है उनको रात का ज्ञान था, इसीलिए वो अच्छे अच्छे गाने उनके सिनेमा में गाते थे। एक सिनेमा बहुत अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, उत्तम कथा चाहिए और अद्भुत संगीत चाहिए और ऑफकोर्स अच्छा डायरेक्टर एक्टिंग ये सब चाहिए। अमर प्रेम में एक गाना है वो राग चोरी और क्षमा एक बहुत सुंदर गाना है, वो है रैना दी से जाए, लता मंगेशकर जी ने गाया है। लता मंगेशकर माने क्या, वो संगीता सरस्वती, उनके सब गाने एक से एक अनमोल थे और एक गाना मुझे बहुत खास तक किया क्योंकि उधर शर्मिला टैगोर की असहाय पिता राजेश खन्ना के अश्रु रंग और वो माहौल गंगा के किनारे उनका घर

में गई थी इंटरव्यू के लिए और उनको लगा विश्वदा मूर्ति माने सीनियर लोग हैं, सीरियस होते हैं, सोशल वर्क करते हैं, इसीलिए शायद वो भजन गीतन ऐसा सुनेंगे। और हमने बताया भाई गाना मैं ही सुनती हूँ। उनका लगा हमारा मैडम है जो सिकल से झलक के ऐसा कुछ। हमने बोला नहीं हमको अच्छा वाला लगा रहता है, क्योंकि वही अच्छा है। तो नहीं 1958 में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला का एक सिनेमा था, उसका नाम है मधुमती। और उस सिनेमा में एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर गाने थे, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आजीजा। अभी शिलोंग का एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा आता है उसमें भी है वो, तो वो एवरग्रीन सॉन्ग है, दिल तड़प तड़प के कह रहा है और आजा रे परदेसी है। मुझे वो अच्छा लगा, बिछुआ बिछुआ बहुत सुंदर है वो गाना, सब गाने सुंदर थे उसमें। और हमने बताया वो अनाउंसर को, नहीं वो 60 में एक गाना मैं बोलती थी, 60 में एक बोलती मुगल यादव को बोलती हूँ मैं, 70 में एक बोलती हूँ, 80 में ऐसा मैं गाना सुनती हूँ, क्योंकि मैं गाना सुनती हूँ इसलिए। हर सुबह मैं वॉकिंग जाती हूँ उस समय मैं FM रेडियो सुनती हूँ, आकाशवाणी से सुनती हूँ। आकाशवाणी का गाना भी बहुत अच्छे होते हैं और 7 to 7:30 शास्त्रीय गाना सिनेमा में उससे हमने राग पहचाना, वो मुझे बहुत मदद किया। संगीत का और विविध भारती का ऑल प्रोग्राम ये बहुत मुझे पसंद है। पर्टिकुलरली वेन आई गो फॉर वॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी से बात करो ये करो फोन पे बात करो, नहीं मैं सिर्फ संगीत सुनती हूँ। मुझे मालूम भी नहीं होता है एक घंटा कैसा चल गया, इसीलिए मुझे सिनेमा का संगीत और शास्त्रीय संगीत का एक सम्मिलन क्या होता है उसको सुनने के लिए मन लगता है। मेरे लिए वो गाना बहुत अच्छा है, बिस्तुआ बिस्तुआ ये आपके लिए मैं पेश करती हूँ।

इत्तेदार और समाज सेवी का सुधा मूर्ति ने। तो आइए सुनिए इस कार्यक्रम का शेष भाग। वही सुबह सिंपल राग, मेलोडियस राग और शांत राग ऐसे मुझे पसंद होता है और उसमें है पहाड़ी उत्सव। सुनने के बाद मुझे लगता है मेरा मन एक पहाड़ में है, उसमें ग्रीनरी है, उसमें पानी है और पहाड़ी मुझे बहुत पसंद है। वो नूरी सिम्मा में एक सॉन्ग था, वो चोरी चोरी को ये आए ओके, और आज पहाड़ी का बहुत

कुछ लोग लगते हैं मुझे, और वो मुझे एक खत लिखा, अम्मा ओ दो 13 पीपल डाइड सो दैट वी कैन लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया, तो ये क्या डेट हुआ था 2001 में, सो यू शुड गिव मनी एटलीस्ट वॉट एवर यू कैन गिव टू ऑल दोस 13 फैमिली। उससे मुझे गर्व हुआ क्योंकि हम पढ़ाते हैं, उतना मुश्किल नहीं होता है, वो पढ़ के वो संस्कार मन में रखते हैं, वो संस्कार कैसे आप वो इस्तेमाल करते हैं, मेरे लड़का से मैंने वो सीखा और सुना, बहुत गर्व हुआ मुझे, मुझे लगा मैंने अच्छा शिक्षण दिया है उनको, मेरी दादी ने मेरी माँ ने मुझे उत्तम शिक्षण दिया कि छोटे उम्र में देश के लिए कुछ करना है, और बच्चों को देश प्रेम के बारे में हम बोलना चाहिए क्योंकि देश प्रेम हुआ तो ही देश बचता है, किसी को मिला है बच्चों के सिर्फ कैसे वो बलिदान किए हैं, कितनी छोटे उम्र में वो किए हैं, ये सब हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ वो पाठ्य पुस्तक में भी वो हम डालना चाहिए एक चैप्टर द पीपल हु लुक आफ्टर आवर कंट्री, और बच्चों को बोलना चाहिए एक बार आप आके देखें उनके जीवन कैसा होता है, वो बॉर्डर कैसे देखते हैं, कैसे वो कष्ट लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, और हम उनके ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें भी उनका दायित्व भी होना चाहिए, हम उनके लिए काम करना चाहिए। लास्ट बट द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस सीरीज मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, वो बॉर्डर सिनेमा का सब देखते हैं और सच्ची स्टोरी है, इसीलिए मुझे हृदय को ये ज़्यादा पसंद है, और भाइयों मेरे चुने हुए गानों का आपके लिए डेडिकेट किया है, आपको अच्छा लगा तो बता देना, कोई गलत हुआ तो माफ करना, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, दैट डजंट मीन माय लव फॉर माय कंट्री इज लेस, माय लव फॉर कंट्री इज ऑलवेज देयर,

कोशिश करते हैं और हमें उन्होंने बता दिया कि आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। 1962 में आप सब लोग मालूम भी नहीं कैसा था उस समय, करंट चेक करते थे, इसीलिए हमने हमारे को बता दिया सब लोग 8 बजे से पहले खाना खा के पढ़ाई करके थोड़ा देश के लिए करंट बचाना मुझे याद। और मेरी नानी थी वो बताई मुझे देश के लिए कुछ करना है, हमें मालूम नहीं था क्या करना है। मुझे वो कि अंगूठी दे, हमने बता दिया कि अंगूठी मैं देश को दे दूँ, वो बताई हाँ दे देना। मुझे पास एक ही था अंगूठी सोने का और वो नेशनल फंड में मैंने दे दिया, ये पहला दान है। और बाद में मेरा लड़का रोहन वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो अमेरिका में पढ़ता था, उस समय पार्लियामेंट में अटैक हुआ और हमारे

से जयमाला कार्यक्रम इसे प्रस्तुत किया जाने माने साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे खान को पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता तेजस्वी कामले।

बांदा में 48 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के जैसलमेर में भी तकरीबन इतना ही तापमान देखने मिला है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तप रहा है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से बचकर लोग रात का इंतजार तो करते हैं, लेकिन अब मौसम में कुछ ऐसी करवट ली है कि रातें भी राहत नहीं दे रही है। देश के कई हिस्सों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, यानी सूरज होने के बाद भी शरीर को ठंडक नहीं मिल रही है। खुद और आपको याद होगा जब दिन भर की कड़ी धूप के बाद लोग रातों को छतें धोते थे और वहां गद्दे बिछाकर खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में सोने का आनंद लिया करते थे, लेकिन अब वो दिन हवा हुए क्योंकि हवा तो गर्म हो गई है ना। पंखे और कूलर के बावजूद अब लोग सो नहीं पा रहे हैं, शरीर को आराम नहीं मिल रहा है, सुबह उठते ही थकान महसूस हो रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ वाले मरीज लगातार वापसी चले जा रहे हैं। दरअसल भारत में इस वर्ष गर्मी पहले से कहीं ज्यादा लंबी उमस

एक्सप्लेन किया ये रिपोर्ट जारी की है जो भारत के एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक ऐसा दमघोटू जाल गर्मियां बुनती चली जा रही है जिससे निकलने के रास्ते बंद हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक घर के अंदर का तापमान अगर लगातार 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो दिल दिमाग नींद और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक बार

साल 2010 से 2014 के बीच रात के औसत न्यूनतम तापमान में हर दशक में 0.21 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 36 में से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रातें लगातार गर्म हो रही है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये बढ़ोतरी भी ज्यादा तेज हो रही है। इसलिए अब लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हीट स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का कोर हीट वेव जोन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जो अब पहले से ज्यादा बढ़ा।

पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक सन 1961 से अब तक लू की आवृत्ति हर 10 सालों में 0.1 दिन बढ़ी है। इस तरह से लू का प्रकोप अब भयानक होता चला जा रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी का जो असर है वो पड़ रहा है स्थिति पर। बिजली की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। मजदूरों और काम करने वालों की

अपनी इलाकों से आने वाली गर्म और उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के मध्य हिस्से में पहुंच रही है। इन हवाओं ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य भारत को भट्टी में बदल दिया है। ऊपर से शहरों में बढ़ता कंक्रीट, बढ़ती आर्द्रता और मिट्टी से गायब होती नमी, इन सब ने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा।

ठंडा कर सका। ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी 50 डिग्री जैसी महसूस होती है। इस तबाही को बढ़ाने में हमारे आधुनिक शहर अपना योगदान कर रही है। भारत के शहर अब अर्बन बीच आइलैंड बन चुके हैं, जिनके समय डामर की सड़कें, कॉन्क्रीट की ऊंची इमारतें और पेड़ों की धरती संख्या सूरज की पूरी गर्मी को सोख लेती है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि भारत के कई शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों की सीमा में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो रहा है। इससे समझ में आता है कि कैसे

पौधे कई प्रजाति के जीव और ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ये धरती के तापमान को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर दिवस मनाने का मकसद ये है कि हम महासागरों के महत्व को जानें। महासागरों से कई तरह के भी हमें महासागर धरती के अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। दुनिया के महासागर धरती के 70% हिस्से को ढांके हुए हैं। हमारे मौसम, ऑक्सीजन और अरबों लोगों के जीवन का आधार है ये महासागर। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2008 में

सबसे हफ्ता ये दिन मनाया जाता है। शुरू में इसका विषय था हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। वैश्विक स्तर पर 30x30 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है महासागरों को लेकर। 30x30 के लक्ष्य का मतलब है पृथ्वी की 30% भूमि और

सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं है बल्कि वो धरती के तापमान को नियंत्रित करते हैं, 50% ऑक्सीजन देते हैं और दुनिया के हर तीसरे इंसान की रोजी रोटी इनके जरिए चलती है, चाहे मछली पालन हो, टूरिज्म हो या समुद्री कारोबार। लेकिन जरा सोचिए कि हर साल 80 टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है, हद से ज्यादा मछलियाँ मारी जा रही है और एसिड लेवल बढ़ने की वजह से कोरल रीफ तबाह हो रही है, नीचे के पहाड़ खत्म हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कई समुद्री प्रजातियां हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएंगी। भारत ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है जो समुद्र और नदी दोनों में डॉल्फिनों को बचाने के लिए केंद्रित है। इसके अलावा भारत का डीप ओशन मिशन हर साल 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है जिसमें गहरे समुद्र में शोध खनन और जलवायु संबंधी अध्ययन शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महासागरों का विश्व

इस साल 20 वां फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जा रहा है और संयुक्त मेजबानी 16 शहर कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर इसमें शामिल हैं, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर। ये टूर्नामेंट 3 देशों द्वारा आयोजित होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है और इसमें पहले की 32 टीमों की तुलना में 48 टीमें शामिल होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर आपको बता दें कौन से हैं जहाँ पर ये फुटबॉल मैच खेले जाएंगे। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मेटलाइफ स्टेडियम जो फाइनल का आयोजन स्थल भी है, लॉस एंजलिस का सोफी स्टेडियम, डलास का AT&T स्टेडियम, अटलांटा का मर्सिडीज बेंज स्टेडियम, सीएटल का यूएन फील्ड, ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का स्टेडियम, फिर बॉस्टन, मायामी, फिलाडेल्फिया और कंसास सिटी के स्टेडियम इसमें शामिल है। मेक्सिको के 3 शहर हैं, मेक्सिको सिटी का स्टेडियम, मोंटेरे का स्टेडियम और गुआडालाजारा का स्टेडियम। कनाडा के 2 शहर हैं, टोरंटो का उद्घाटन होगा 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टेका स्टेडियम में और फाइनल मुकाबला होगा 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क

करने के विचार फीफा विश्व कप की लीग स्टेज के सभी मुकाबले रात 9:30 बजे शुरू होंगे और अगली सुबह 9:30 बजे तक अलग अलग वक्तों पर खेल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के दीवानों की रातों की दर्शकों के लिए पहला मैच 12 जून को आधी रात के बाद 12:30 बजे शुरू होगा। समझ गए ना, फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से शुरू होगा। दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप माना जा रहा है। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। चलिए उन 5 खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में दागे हैं सबसे ज्यादा गोल। मिरोस्लाव क्लोज, जर्मनी के खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 2014 से लेकर 2022 के बीच 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है और इस दौरान 24 मुकाबलों में उनके दागे गए गोलों की तादाद है 16। 2002 से 2006 में क्लॉस ने 5-5 गोल दागे थे जबकि साल 2010 में 4। अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए।

लिए खेलने वाले रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में है सेकेंड नंबर पर। जब फिनोमेनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए हैं 19 मुकाबलों में। 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल डाले थे। ब्राजील को चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। जस्टिन फोंटेन फ्रांस के खिलाड़ी 1958 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना मुश्किल नजर आता है। जस्टिन ने इस वर्ल्ड कप में अकेले 13 गोल किए थे। सबसे बड़ी बात यह कि ये 13 गोल केवल 6 मैचों में किए थे। ये रिकॉर्ड आज तक कोई फुटबॉलर तोड़ नहीं पाया है। लियोनेल मेसी साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में है फोर्थ नंबर पर। मेसी ने 2006 से 2022 के बीच फीफा वर्ल्ड कप को कुल 13 गोल किए हैं। कतर में खेले गए आखिरी वर्ल्ड कप में मेसी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पांचवें नंबर पर है किलियन एम्बापे। कतर में हुए आखिरी वर्ल्ड कप में भले ही अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी लेकिन एम्बापे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। फाइनल में एम्बापे ने अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बना दिया था। कुल 14 मुकाबलों में 12 गोल उन्होंने किए। लास्ट वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे और गोल्डन बूट अपने नाम किया था। ये है एम्बापे का कमाल। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल का बुखार है वो सबको अपनी चपेट में लेगा और सब फुटबॉल के दीवाने बनते चले जाएंगे। हमारी भी नजर रहेगी और जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको ये बताते रहेंगे कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और कौन कौन सी टीमें ऐसी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके शोध

कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारी ऊपर है। मेरा तो भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छेड़ देते। उसका काम करने वाला

करते हैं। मेरे बेटे की तुम्हें कोई चीनी आज से देख न सकेगा बहू। तुम किसी बात को सोचो मत। बीजू गया तो मैं तो अभी बैठा हूँ ना। राम प्यारी और राम दिवारी दो सगी बहन थे। दोनों का विवाह मथुरा और बीजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें मेघन की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगे। श्री दास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देश देश प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का दिलजी बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। अब क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिव दास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यही कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मार्जिन बन में तो काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा। श्री दास ने समझाया, बेटा देव गति से तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से खाना खाने के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो बीसों काम है, कोई साधु संत आ जाए तो पाहुना ही आ पहुंचे, उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर श्रीदास ने एक न सुने। श्रीदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या चीजें होती है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर ये ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वो कोठरी कोई तिलिस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को ये रहस्य खोल कर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा ये जरूरत इसने भला क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ इसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़ शक्कर गेहूँ जो आज चीजें रखी हुई थी, एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या बांगले पर दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा बरसाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसी खड़ी है और एक रुपया मांग रही है।
विश्राम प्यारे ने रुखाई से कहा, अभी तो एक पैसा घर में नहीं है दीदी, क्रिया कर्म में सब खर्च हो गया है। दीदी ने टकरा गई, चौधरी के घर में उसके लिए एक रुपया भी नहीं है? ये विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वो सब कुछ क्रिया कर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये बहाना किया होता तो उसे अचरज न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर ये शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी तभी की तो बात है, उसने जानकी को तेल भर दूध दे दिया था, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगने पर दे देती थी। विपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गाँव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। दुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो दीदी, बड़े गर्मी में पढ़कर आई हूँ। नहीं तुम जानती हो मेरी तो आदत ही नहीं है मांगने का आश्रय की। बाकी का एक रुपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बकचोदी कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह ये विपत्ति टले। मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन है जहां मैं मांगने जाऊं? प्यारी सच से मस्तिन हुई। उसके जाते ही प्यारी सास के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था

देती मानो बैलों का राती हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, अब वो घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकल कर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। वो दो दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू लगा दे। अच्छा उनसे इतना बुरा होगा? द्वार ऐसा सुखना चाहिए कि देख कर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि उपकार जाने लगे, अभी कह दो तो सुनक उठेंगे। अच्छा ये मुन्नी नाम से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नाम ले झाका। दुर्गंध आ रही थी, ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर दिया, छुट्टी हुई और किसी से क्या मतलब। हाँ दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता है कि चार घड़ा पानी ना अंदर डाल दे। मजदूर रखा है वो भी तीन कौड़ी का, खाने को 150, काम करते नानी मरती है नानी। आज आते हैं तो पूछती हूँ, नान में आके पानी से नहीं बदला? रहना हो रहे जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे, चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। श्री दास ने पुकारा, अरे बहू पानी क्या होगा, इसमें तो पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर दूर खड़ी है। श्री दास मारते भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए, प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल सुविचार और सुरुचि के चिन्ह देखते थे। प्यारी में गृह यंत्र की ऐसी चाबी करती थी कि सभी पोते ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि वो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी सदस्य दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई सीखने लगे की घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उतना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था, दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कैसे दिया हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा झुक नहीं गया है कि आज ही उतार कर पी दिया जाए।

को कभी रुपए आएंगे और काले को कड़े बनेंगे। जोर जोर कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोर जोर के रखती हूँ तो तेरे लिए भी कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा है। दुलारी बोली, तुम न खाओ पहनो लेकिन दस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे घड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपये न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ कड़े। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वो गरीब सबके धौस भर कर सुनती थी। स्वामिनी का तो ये धर्म ही है कि सबकी धौस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर किसी का भी असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है बेचारी। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है बेचारी। कभी किसी से हंसी बोलती भी नहीं, जैसे काया पर

0: सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया। दिन भर गोदी में टांगे रहती और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया। हमारे दोस्तों के साथ झूठ बनाई अपने
1: जी से प्रताप सिंह जो है शिष्य लोग रेत को पेगी जिन्होंने नौजवान की आवाज

हुआ था इस फिल्म से, जी दरिया सुन रहे थे सुनील नौटियाल और जाना अली खान की आवाज से तनिष्क ने म्यूजिक किया था और गुरप्रीत सोनी ने इस गीत को लिखा था।

की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सागर भाटिया ने सीखा और उन्हीं पर म्यूजिक था दे दे प्यार दे तू ये था सिलग्राम और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम चित्रलोक यही समाप्त होता है।

सकें। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिखर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली

सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया।

свадьбы, и потом есть

सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं।

के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है।

0: कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए ऐसी न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी।

के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस

भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष सानी पूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने पूरी

0: ना की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
1: मेरे मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र नोट करें मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली
1: 1800 आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

मुख्यमंत्री की आवाज में ये दरिया सुन रहे थे तेरे घर के सामने कल शराम का खत पर जयपुर ने लिखा था ऐसी बनने की तरफ थी। विविध भारती के प्रताप सिंह ने प्रोग्राम आपके लिए

लता मंगेशकर को और सचिन को आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म के गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीत पर किया था सलील चौधरी ने।

उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई।

चाहे अलसाई चीजों पहर हो, कोई हसीन शाम हो या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द

बस अभी एक और फिल्म आई बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगत राम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

से जानकार रविंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी रविंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे रविंद्र कृष्ण ने।

ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अल्फेल की। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान।

चाहती बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों और हवाओं के लिए।

कोई अर्थ नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो। ये जान लो तुम मेरी जान हो और जहान भी तुम हो।

से दो हुए, दो से तीन और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे।